मद सामीन, बच्चे जब भी कभी कोई बुरा काम, कोई ऐसा काम जो नापसंदीदा हो करें, तो उनको प्यार और मोहब्बत के साथ और इलादा लोगों के बच्चों के सामने नहीं बल्कि इलादा कमरे में उनको समझाना चाहिए। और जब कोई अच्छा काम करें तो बच्चों को इनाम और शाबाश देनी चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीक़े से बचपन ही से जब बच्चे की ज़बान चले, बात करने के काबिल हो, तो उसकी ज़बान पर अल्लाह ताला का नाम लाना चाहिए और उसको कलमाए तय्यबा पढ़ाना चाहिए। किसी नेक साले मुत्तकी सहीउल अकीदा आलम के पास उस बच्चे को कुरान पाक की तालीम देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब बच्चे कुरान पाक पढ़ लें तो फिर हमेशा कुरान पाक को पढ़ते रहना चाहिए। सुबह या शाम थोड़ा थोड़ा कुरान पाक ज़रूर बच्चों से पढ़वाया करें। अक्सर माँ बाप जब बच्चे कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं, बड़ा फंक्शन किया आमीन के ही, और उसके बाद कुरान पाक को गिलाफ में लपेट कर रख दिया जाता है और बच्चे कभी उसको पढ़ते नहीं। इसका असर ये पड़ता है कि चंद माह और सालों के बाद वो बच्चे कुरान पाक भूल जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वैसे भी जिस घर में बच्चे बच्चियां कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला रिज़क में बरकतें अता फरमाता है। बच्चों को हमेशा बचपन ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपका अदब बच्चों को सिखाना चाहिए। साथ साथ अहले बैत, सहाबा कराम, औलिया कराम और उलमा जो बड़े बुज़ुर्ग हों, उनका अदब करने की बच्चों को तालीम और तरबियत देनी चाहिए।